ยะติรันโตสรีติปุณณีโหยิตันสัมมาโต भाई बंधु नाता दारा सबै बंधु तोड़िए इमारत को हुकुम बसे जाने।

かりかな。いへらまへらまへらまい。माता पांडव भाई और के भाई भाने देखी उतापटि परमात्मा 36 वर्ष पछाड़ी राज्य उनीले 36 वर्ष पछाड़ी यादवहरू जो विपराका श्रापाले सारा छिए भए प्रभासती रामा देखे जसै कृष्णले देखबाने मनमा कुल छिए भयो जानु पर्यो लौ भनी सुरहारण वैभवशन पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: गोपशिला। समय दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
1: असोज 9 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 काटाकुटी बोर्डिङ। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 10 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गाउँपालिका आसपास। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
0: असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका 6 ढुङ्गे बजार बाखोर। समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कालापानी। समय दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
1: असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 झोर मन गाउँ। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सरनथली। समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 42 42 75 17।
0: असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पाँडेखानी। समय बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भैँसे बजार। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
1: असोज 15 गते मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पौटी सभाहल। समय बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 30 77 72। असोज 15 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भित्रे भन्ज्याङ। समय बिहान 8 बजेदेखि मध्याह बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
0: असोज 17 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 महिला भवन। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 18 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वडा कार्यालय। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 40 68 24। र असोज 21 गते सैलुङ गाउँपालिका सह संस्थाको प्राङ्गण। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
1: साधारण सभामा उपस्थित सेयर सदस्यहरूलाई कर बाहेक रू 300 खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ। 2083 साल असार मसान्तसम्म नियमित बचत भएको ऋणको

राजा नवश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नै परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान।

धर्म कुमार कैसर्या श्री ब्रह्म ज्ञान याने विदुर कैसर्य ज्ञान हवस सुजन मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल सुत सहित।

न गए आज्ञा पाए सूरी बजिले दर्शन प्रभु को गरे आंगा कोमल भाची आश्रन दिए आनंद भाती परे आश्रन सूरी बलाई लक्ष्मण दिले दिए हनुमानले

सुग्रीव मंत्री लेता प्रभु जी को दिल खुश गराए तस। हे राम रावण लाई मारी सजय सीता जी लाई यहाँ।

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्णो रघुवर विमल दशु जोदायको फलचारी बुद्धिहीन दोन जानकी सुनि र पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिम्रो उजागर, रामदूत अजुल दलधाम, अञ्जनी पुत्र पवन सुत राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमती निवार्य स्मृति संगी, कंचन वर्ण विरास वेश, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरजौ ध्वज विराजई, कांदे मुझे जने साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया, विकट रूप बदल गजर आया, भीम रूप दरी असुर संहारी, रामचंद्र के काज संहारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतसम भाई, सहज बदन तुम्हारे जस गावे, अस्क श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, इन कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषन मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लिलो ताई मद फल जानु, प्रभु मंदिर का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुबारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काउ को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम्र वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगद जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमन दिगे दाता, असवर दिन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदावर रघुपति दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटई मिर सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की आई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सनाहरी चेरा, किजनाथ हृदय मोहडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसुंधरा शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा। जय हनुमान, जय बजरंगबली।